0: Probe continues in the Delhi fire tragedy which killed 21 people. The Delhi administration has swung into action, and after conducting a survey of illegal hotels and guest houses, the MCD carried out a drive shutting down all flouters. Bulldozer action was carried out today in Malviya Nagar, raising illegal shops functioning in the area. The strict action follows after fire broke out in Flourish Stay Hotel, which was operational despite an expired bed and breakfast license. As the investigation into the devastating fire at Delhi's Flourish Stay Hotel in Malviya Nagar gathers pace, details of previous criminal cases involving the hotel owner, Lovkesh Bajaj, have come under scrutiny. Bajaj, who was arrested by Delhi police in connection with the fire that claimed 21 lives, had earlier been arrested in a case linked to the alleged procurement of forged Indian identity documents and passports for Bangladeshi nationals. While the probe continues in the Delhi hotel tragedy, the stories of people who helped amid that devastating fire also continue to emerge. This is about the man who gave mattresses worth of lakhs of rupees to the guests who were jumping out of the Delhi hotel to escape from that deadly fire which claimed lives of 21 people. This is a story about a man who did not worry about the cost of the mattresses and the loss that he will make, but prioritized saving lives of people and to reduce the human cost that we paid in the Delhi hotel fire tragedy. My colleague spoke to him. Take a look at what he had to say.
1: हौजरानी के फ्लोरेंस होटल में जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि लोग खिड़की से कूद रहे थे। अब ये रियाजुद्दीन साहब हैं और रियाजुद्दीन साहब की ठीक उसी के सामने गद्दों की दुकान थी और इन्होंने तुरंत गद्दे को नीचे बिछा दिया। 1.5 से 2 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ गद्दों का जरूर, लेकिन 8 कीमती जानें बच गई। रियाजुद्दीन जी, क्या हुआ, कैसे आपको आइडिया आया कि गद्दे को बिछाना चाहिए?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सिविल डिफेंस में हैं।
1: अच्छा
2: जी। हाँ, तो उसमें हमें ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की, तो हमें वो अंदाज़ा हमारे दिमाग में था कि भाई आग बुझाएगी जाएगी तो आग लग गई तो कैसे बुझाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे करा जाएगा, CPR कैसे दिया जाएगा, वो हमें सब नॉलेज थी इस चीज़ की। तो जब हमने देखा हालात ख़राब है, मेन गेट पर आग लगी हुई है, तो हमने सारी अपनी दुकान के गद्दे जितनी थे सड़क पर बिछा दिए।
1: सड़क पर बिछा दिया?
2: हाँ, और ऊपर इशारा दिया। वो लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खिड़की खोल के, बचाओ बचाओ बचाओ मदद कर वो, तो हमने उनको इशारा दिया आप इस पर कूद जाओ, तो उस पर वो लोग कूदे, 7 से 8 लोग कूदे, बाद में लगभग 12-15 लोगों की संख्या हो गई थी, उनकी जान बच गई सर।
1: उनकी जान बच गई। ये देखिए, ये गद्दे की दुकान थी, ये गद्दे की दुकान है रियाजुद्दीन साहब की, इसमें आज की तारीख में एक भी गद्दा आपका नहीं बचा है, लेकिन संतुष्टि होगी कि 8 कीमती जानों को आपने बचाया।
2: हाँ, वो हमें बहुत पसंद इस चीज की, हमने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी और दुनिया के लिए।
1: तो बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन इस दर्दनाक वाकये के बीच ऐसी कहानियां भी हैं कि रियाजुद्दीन साहब ने अपने पैसे के, अपने दुकान की परवाह नहीं की और गद्दे सड़कों पर बिछाए, जिससे जो लोग ऊपर से कूदे उनकी जान।
2: यहाँ पर हमारे MLA साहब सतीश उपाध्याय जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी काफी हलचल जाना, मैक्स हॉस्पिटल भी गए वो।
1: हाँ, वो भी कल बता रहे थे। हाँ, कि आपने गद्दे बिछाए थे।
2: और
1: कि
2: उसमें फिर ये है कि पुलिस प्रशासन ने भी काफी हेल्प की, काफी ग्रेट टाइम से आ गई, उसमें किसी का ऐसा रोल नहीं था जिससे कि कोई आदमी की लूजिंग या लापरवाही पाई
1: नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके भागे नहीं, कि ऐसे हालात में लोग भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने गद्दे को बकायदा बिछाया, लोगों की जान बचाई।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up after the break, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: what seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है।
3: मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा।
5: From the world famous Banarasi.
6: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
7: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
8: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति इज दी विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
9: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
10: ओडिशा का है। जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
11: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
12: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड I left the Democratic Front.
13: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
14: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.

0: हमारा जो आज नेशनल वर्कर वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, वो उस मीटिंग में पहले जो है जो हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बंदोपाध्याय है और उनको सहायता के लिए दोनों रहेंगे, एक डेरेक ओब्रायन और दोलार सेन, वो लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, और स्टेट लेवल जो जो अलग स्टेट है उन अलग स्टेट में जो जो है उनको बोल दिया है, दीदी ने बोल दिया जो उन लोग सजेशन देगा, उसका सजेशन का बाद ए वो स्टेट में कमिटी बनाएगा।
1: जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई माँ का लाल है रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूँ, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूँगा।
2: Well, moving on to more updates coming in at the Sawar, in a major revelation in the Nashik TCS sexual harassment and alleged forced conversion case, the police charge sheet cites the victim's statement claiming that she was repeatedly shown videos of controversial preacher Zakir Naik and Pakistani cleric Tariq Jameel as part of efforts to influence her religious beliefs. According to the charge sheet, the victim even alleged that she was told accepting Islam would help end her mental stress, and that sustained counselling and persuasion gradually even affected her thought process. The revelations add a new dimension to an already sensitive case, with investigators now examining the allegations of systemic religious influence as well as forced conversion in the case.
3: देखो, उठाओ और जेल में डालो और वहाँ पे कार्रवाई करो, तो ये तो पुलिस के हाथ में, तो जिस तरीके से आप इस बारे में कार्रवाई करोगे, वैसे ही ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बच्चों से पैसा लेके वहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत कड़क से कड़क कार्रवाई करो। जो भी गलत करता है, जो भी इलीगली वहाँ पे इस महाराष्ट्र में देश में एक्ट करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए।
2: With that, we begin to a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: influence as well as radicalize them. Popular educator Khan Sir has landed in legal trouble after being named in a case linked to firing incidents in Patna. Police have already arrested security personnel connected to the case. An investigation is now examining Khan Sir's alleged role. Let's now take you through the top story of the hour. India's quarter four GDP numbers for fiscal year 26 are out, and India has clocked in a robust 7.8%, a feat that Prime Minister Modi hailed yesterday in Gujarat at his public meetings. Speaking about India's inherent economic strength, Prime Minister reiterated that growth numbers are a result of reforms and the hard work of about 140 crore Indians. His remarks come just days after Leader of Opposition Rahul Gandhi predicted rather an impending economic tsunami for India, and opposition even gave out dire warnings about India's economic situation. However, global comparative figures show India has shown strong fundamentals compared to major economies of the world, with the RBI governor reaffirming that India is better prepared to deal with global headwinds.
1: Bharat nakaratmakta se kahin aage nikal chuka hai. यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं, और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, 7.7, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया संकटों में गिरी हुई है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं।
2: Shaped by heightened uncertainty, disruptions to key trade routes and supply chains, increased market volatility and cautious business sentiment. Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. We remain confident to withstand these shocks with minimum pain.
3: With the growth outcome, it only confirms what we believed on February 27, that the Indian economy was actually in a pretty strong Goldilocks situation, with good growth, moderating inflation, and

0: sharp attack on the party, adding a national dimension to the unfolding controversy in Karnataka. Prime Minister Modi hit out at the Congress's crisis in the state, saying that public anger was a real reason behind the CM swap.
1: Karnataka ki janta mein bhi Congress sarkar ko lekar ke bahut aakrosh hai. और यही कारण है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है.
2: ऑफ कोर्स वी हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई विल स्पीक टू हिम, विल कन्विंस हिम, इज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी. ऑफ कोर्स वी हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई विल स्पीक टू हिम, विल कन्विंस हिम, इज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी.
3: आई एम हैप्पी, नो प्रॉब्लम. वी मेट राहुल जी, सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी, no problem. No, Rahul has told I will sit up.
0: Well, from one crisis to another, let's in fact now turn our attention to West Bengal. Hit by a mega rebellion, TMC chief Mamata Banerjee has carried out one of the biggest leadership shakeups in recent years. In a sweeping organizational overhaul, the party supremo unveiled a revamped structure, turning to loyalists and even old-timers. Abhishek Banerjee retains his post as the National General Secretary, while Rajya Sabha Member Parliaments Derek O'Brien and Dola Sen have been named National Joint Secretaries to assist him. The state unit has now been completely rejigged, with Chandrima Bhattacharya replacing veteran organiser Subrata Bakshi as the state president. Meanwhile, TMC has also decided to challenge the Speaker's recognition of rebel leader Rituprata Banerjee as a leader of opposition.
4: जो ऑपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है. उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मांडे में जा रहे हैं. कोर्ट में मांडे में हम लोग फाइल करेंगे. हमारा जो आज नेशनल वर्कर वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में पहले जो है, जो हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी लेवल में, स्टेट लेवल में, और स्टेट लेवल जो जो अलग स्टेट है, उन अलग स्टेट में जो जो है उनको बोल दिया है, दीदी ने बोल दिया, जो उन लोग सजेशन देगा, उसका सजेशन का बाद ए वो स्टेट में कमिटी बनाएगा.
5: जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई माँ का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूँ, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा.
0: With that, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है, उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में। हमारा जो आज नेशनल वर्कर वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में पहले जो है जो हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बंदोपाध्याय है, और उनको सहायता के लिए दोनों रहेंगे, एक डेरेक ओब्रायन और दोलार सेन, वो लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, और स्टेट लेवल जो जो अलग स्टेट है उन अलग स्टेट में जो जो है उनको बोल दिया है, दीदी ने बोल दिया जो उन लोग सजेशन देगा, उसका सजेशन का बाद ए वो स्टेट में कमिटी बनाएगा।
1: जनता ममता बनर्जी का नाम से वोट दिया, जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई मां का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं, अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए मैं उसको सलाम करूंगा।
2: Let's now take you to Karnataka. Now, political temperatures continue to rise in Karnataka over the cabinet portfolio row, with Chief Minister D.K. Shivkumar working to contain discontentment within his government. In the latest development, Shivkumar held a nearly two-hour-long meeting with Ramalinga Reddy, who appeared positive after the talks and said that he would soon let everyone know of his decision whether to continue with his resignation or not. Meanwhile, amid the political tussle within the Congress, Prime Minister Narendra Modi has also launched a sharp attack on the party. This importantly adds a national dimension to the unfolding controversy in Karnataka. Now, Prime Minister Modi meanwhile hit out at the Congress crisis in the state, saying that the public anger was the reason behind the CM swap in Karnataka.
3: Karnataka ki janta mein bhi Congress sarkar ko lekar ke bahut aakrosh hai. और यही कारण है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है।
4: ऑफ कोर्स वी हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई विल स्पीक टू हिम, विल कन्विंस हिम, इज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी। ऑफ कोर्स वी हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई हैड प्रॉमिस्ड हिम, आई विल स्पीक टू हिम, विल कन्विंस हिम, इज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी।

और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया संकटों में गिरी हुई है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है।

0: कुछ भी, माधुरी मैम को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई है और उस दुनिया में रहती हैं कैसे खोई रहती हैं। इनकी आंखों में देखना बहुत दूर तक देखती हैं, वो पता नहीं कितने दूर जाती हैं। आई स्टिल कोई मतलब किधर तूफान हुआ, किधर आग लगी, मैंने बोला इधर ये हुआ। आई टू टेल हर एवरीथिंग यू नो, ये वो ऐसे हाँ या
1: It's playful, it's flirty, it's exotic. Feathers have made a huge comeback in fashion, from Aishwarya Rai at Cannes to Beyoncé at Met Gala, from runways to the red carpet. I catch up with the OG queen of feathers in Indian fashion, designer Pallavi Mohan.

0: इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Let's now take you through the top story of the hour. India's quarter four GDP numbers for fiscal year 26 are out, and India has clocked in a robust 7.8%, a feat that Prime Minister Modi hailed yesterday in Gujarat at his public meetings. Speaking about India's inherent economic strength, Prime Minister reiterated that growth numbers are a result of reforms and the hard work of about 140 crore Indians. His remarks come just days after Leader of Opposition Rahul Gandhi predicted an impending economic tsunami for India, and opposition even gave out dire warnings about India's economic situation. However, global comparative figures show India has shown strong fundamentals compared to major economies of the world, with the RBI governor reaffirming that India is better prepared to deal with global headwinds.
2: Bharat nakaratmakta se kahin aage nikal chuka hai. यह असीमित आशावाद वाला देश है, अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं, और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, 7.7, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया संकटों में गिरी हुई है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं।
3: शेप्ड बाय हाइटेंड अनसर्टेनिटी, डिसरप्शंस टू की ट्रेड रूट्स एंड सप्लाई चेन्स, इंक्रीज्ड मार्केट वॉलेटिलिटी एंड कॉशियस बिजनेस सेंटिमेंट। Let me at the very outset.
1: And the top headlines that we're tracking at 3 p.m. this Saturday afternoon, Prime Minister Modi chairs Economic Advisory Council's meet. Discussions focused on reforms aimed at improving ease of living and ease of doing business across sectors. Meeting also assessed the impact of West Asia conflict on India and the global economy. India's latest GDP numbers have ignited a fierce showdown. Center celebrates robust growth as world's fastest growing major economy. Prime Minister Modi accuses critics of undermining the vision of Atmanirbhar Bharat, while the BJP hits back at Rahul Gandhi's economic tsunami remark.
4: major churn underway in Tamil Nadu politics. Former BJP state chief K. Annamalai launches a new political movement, triggering resignations and defections from within the BJP ranks. Once seen as the party's biggest face in Tamil Nadu, Annamalai is now charting an independent course.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: डीके शिवकुमार एम्बा एसुवादा नामो
4: द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मिस्टर डीके शिवकुमार विद अस सर। हाउ डू यू वांट टू रियली रीशेप द सिटी एंड द स्टेट्स?
5: द एंटायर कंट्री इज वाचिंग अस।
4: या
5: द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैज अश्योर्ड अस दैट यू विल कोऑपरेट।
6: Today we are asking the question, what does India think about the political direction in which the country is going? 62% of TMC voters do want Mamata Banerjee to continue. 65.8% of BJP voters think Shubhendu Adhikari has done a fantastic job.
7: And a lot will depend on how Shubhendu Adhikari ensures that neither those people come into the BJP's rank and file.
8: Mamata Banerjee's politics in Bengal, at least in Bengal, is really in a dangerous curve.
9: That we are moving towards Sonar Bangla, the industries which left today,

0: तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: 2014 में वायदा था हम डबल डिजिट में जीडीपी ले जाएंगे। हमारी 8.8 जीडीपी जब रहती थी तो उसकी आलोचना होती थी, आज 0.7 पे इतरा रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं। अरे पहले अपने रिजर्व बैंक से तो बात कर लेते। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि अभी टफ टाइम है, तो राहुल गांधी की बात का तो आरबीआई गवर्नर दोनों एक ही बात कर रहे हैं और आप 7.7 पे। अरे मोदी जी क्या दुर्दिन आ गए हैं आपके।
2: अरे काय का जीडीपी सब मैनिपुलेटेड है, देश खड्डे में गया है, देश बिखर गया है, पूरा देश को बेच दिया है, देश को पूरी तरह बेरोजगार रास्ते पर आ रहा है, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल का गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है और ये इस सब में आज जनता को जीना मुश्किल हुआ है, अपनी लाइफ कैसे ये करे वो बड़ा प्रॉब्लम है। और जो अभी नया नया वो अध्यक्ष बना है वो ये सब इस पे कर रहा है। अरे जीडीपी कैसी बढ़ी ये तो दिखाएं, क्यों बढ़ी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हुआ, पर कैपिटल इनकम कम हुई, हाथ में रोजगार नहीं है, बेरोजगार भटक रहा है, पूरा रिजर्व बैंक का सोना बेचा जा रहा है, रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड निकाला जा रहा है और ऐसे में जीडीपी 7.7 क्यों जाती है? अपने आप जाती क्या?
3: शेप्ड बाय हाइटेंड अनसर्टेनिटी, डिसरप्शंस टू की ट्रेड रूट्स एंड सप्लाई चेन्स, इंक्रीज्ड मार्केट वॉलेटिलिटी एंड कॉशियस बिजनेस सेंटिमेंट। Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. We remain confident to withstand these shocks with minimum pain.
4: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters, placards, highlighting their demands. Several participants wore cockroach masks to draw their attention to their grievances.
5: जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
6: मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे।
4: And a month after NDTV had broken the news on Shreyas Iyer becoming India's next T20 captain, he was formally given the reins today. He will lead India at least in the next 3 T20 series. Suryakumar Yadav, as a result, has been dropped from the captaincy and from the team. Selectors have also taken a big leap of faith by including teen sensation Vaibhav Suryavanshi in India's T20 team. Here is more.
7: As the IPL frenzy settles

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: वी एट एनडीटीवी ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वाज द हॉटेस्ट इलेक्शन इन ऑल ऑफ इंडिया। All of India watched it on NDTV.
2: Why I say this, it could be a big story.
3: Thank you.
1: Stories that no one else had.
4: The memorial they have built is not just for Abhiji.
1: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
5: इस वक्त यहाँ पर अफरा-तफरी का
1: moments that gave competition viral fever.
6: हबीब का गुंडा हमला किया।
7: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा।
8: बंगाल बचाने का वोट।
9: Fight for justice. Fight for every woman here.
1: When it was anything Bengal, you tuned in only to NDTV. This GOG of elections. NDTV.
10: Size of fish, what taste of fish you like.
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा आर प्योर मसाला।
15: Landed in the beautiful

0: तमिलनाडु में बीजेपी थी कहां जो चली जाएगी?
1: वही
0: आपका
1: तो मैं कह
0: आर्गुमेंट
1: रहा
0: फ्लॉड
1: हूं।
0: है। नहीं, तो
1: नहीं
0: तमिलनाडु
1: नहीं
0: बीजेपी थी नहीं,
1: जो
0: लेकिन लेकिन जहां पे आप फंसोगे आशुतोष, मैं वो भी बता देता हूँ।
1: देखिए
0: सीपीएम और कांग्रेस,
1: जो
0: सीपीएम
1: ले
0: और
1: वो ले
0: कांग्रेस
1: देके
0: चुमेंतु अधिकारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि टीएमसी का सत्यानाश हो तो उनके लिए रास्ता बने आने का। सो दैट इज समथिंग वी टॉक अबाउट इंडिया अलायंस, दे आर ईटिंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स डिमाइज। हाउ दे आर गोइंग
1: फाइव
0: टू कम
1: सेकेंड्स
0: अप
1: ओके,
0: विद अ
1: ओनली
0: फ्यूचर?
1: फाइव सेकेंड्स, आई
0: सी
1: रियली मस्ट ब्रिंग इन सज्जन
0: यशवंत,
1: कुमार। हाँ
0: यशवंत बीजेपी के पास लीडरशिप है कहाँ? कांग्रेस से हिमंता को लेके आते हैं, टीएमसी से सुवेंदु को लेके आते हैं, बोम्मई को जो है वो जनता दूसरी पार्टियों से। वेयर इज द
1: दूसरा, कांग्रेस
0: लीडरशिप?
1: व्हाई दे कांट रिटेन, दैट
0: वेयर इज द
1: इज द
0: लीडरशिप
1: क्वेश्चन टू आस्क, कि कांग्रेस क्यों
0: सर?
1: रिटेन नहीं कर रही
0: सर
1: है।
0: द मूट पॉइंट इज, हु इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड विच वे द विंड्स आर ब्लोइंग पॉलिटिकली। एंड सिंस यू सेड बीजेपी खत्म हो गई, आई वांट टू जेंटली पॉइंट आउट आशुतोष जी, बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 4 ही MLAs का फर्क है तमिलनाडु में।
1: हाँ,
0: कांग्रेस हैज गॉट 5 MLAs एंड बीजेपी हैज गॉट 1 MLA, बट
2: 400%
1: दैट इज योर शोइंग यू आर
0: ओके,
1: ट्रू
0: फोर
1: स्टूडेंट
0: हंड्रेड
1: ऑफ
0: परसेंट
1: राहुल
0: दैट इज
1: गांधी।
0: एक्सलेंट। सज्जन कुमार, वॉट इज द कोहेरेंस इन INDIA? हु इज गोइंग टू टेक ऑन नरेंद्र मोदी इन 2029? एंड आई एम कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ कर्नाटका एज जस्ट वन। लाइक वी सेड एट द बिगिनिंग, वी सॉ व्हाट हैपेंड इन द MLC इलेक्शंस यस्टरडे। 7 seats वर गिवन अनकंटेस्टेड टू द महायुति।
2: Yes.
0: How are you going to fight the BJP if your own people do not file their nomination?
2: No, for any alliance, you need a credible anchor, not just an anchor. Congress could be an anchor, but it's about the credibility. Congress cannot have two. One, they remember the Panchmadhi resolution of Ekla Chalo, go alone, you know, and discard the regional party, Congress being the natural party of governance. That is the mindset when you talk to the Congress people internally and subjectively. They want, they cherish, they relish the decimation of regional allies who are anti-BJP because they think we are going to be the natural benefit. Many of them quip
0: no,
2: that...
0: Which is fine. You can demolish your regional allies, but at least win. Because regional allies will then say, when you fight BJP head to head, like in Assam, what do? You collapse in front of the BJP, but then you demolish us also.
2: Exactly.
0: Hum to dubenge Sanam type ka wo hai na.
2: So if you go, if you see the, I mean, history of electoral democracy in India, today's BJP position is that of Nehruvian Congress, not even Indira Gandhi's Congress. It's so hegemonic that you can say, which would be the prime opposition? Would it be left, CPI, or Jan Sangh, or Swatantra Party? You know, 52 some party, someone else, 57 someone else, 62 someone else. But they all are marginal because they are fractured. At this juncture, you talk about the India bloc, you talk about lots many regional parties. Who are the ones? All three-wheelers and pickup trucks, you know, on a national highway cannot pull a 18-wheeler BJP into the opposite direction. And the only truck that is with a shutdown engine is Congress, you know. So therefore, where is the anchor? Where is the force? You know, in Bengal, people are talking about Mamata Banerjee may come back. This is the Gen Z of Bengal. I'm talking specifically about the Bengal, not other states, who are completely hostile to TMC and Mamata. So are they going to fall in love with TMC and leadership again? What for?
0: So
2: is
0: then,
2: there any memory?
0: Okay, so then you are saying that the only credible opposition anchor is the Congress, or rather the only possible opposition anchor is the Congress,
2: precisely.
0: But they lack credibility, right?
2: Exactly.
0: Now. They lack credibility
2: and relatability.
0: Relatability and coherence, might I add.
1: And hard work.
3: You know, you can say all sorts of, you can make all sorts of charges
1: Where
3: as
1: is Rahul
3: you want
1: today.
3: Rahul Gandhi is raising the issue of the Andaman Islands and how the government is hiding behind national security to get benefits to its cronies.
4: अरे आपके प्रधानमंत्री जाके दूसरी प्रधानमंत्री को टॉफी देते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर देती है, फिर आपकी भक्त मंडली ट्विटर पे रोना बरसाती
1: है। कौन कौन?
4: मोदी जी ने किसको टॉफी दिए थे?
1: मेलोनी नेवर फॉलोड मोदी जी, दैट्स द प्रॉब्लम।
4: अरे फिर भी
3: एनीवे, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू कैन हैव ऑल्सो
1: दैट इज योर आंसर टू कर्नाटक इंप्लोजन।
3: Let me, the important point is that you can have all sorts of charges against the Congress and how the Congress is never able to match up to the BJP when it's a head-on, head-to-head fight. But that's not the case. If you look at Haryana, the elections that concluded 1.5 years ago, the difference between the vote share of the

0: give a letter to the Lok Sabha Speaker?
1: See, yesterday, Bengali media was asking me when I came out of the assembly. I told them that for the last 7 to 10 days, I was not in a condition to speak with any of my former colleagues in the parliament, Trinamool Congress colleagues. Then yesterday, I attempted to call a few of them. 4 or 5 people I attempted to call. But incidentally, everybody's phone was switched off, or either switched off or not reachable. So I could not get a chance. Today, maybe in the evening time, late evening or in the night, I will try to call up a few more MPs. If I have a chance to speak with them, then probably, maybe I can get some idea of what is going to happen in Delhi in the next few days.
0: Interesting. So 5 to 10 MPs that you tried to contact, maybe their phones were on flight mode, Ritabata Banerjee. Who knows? When they do come back on again and you manage to speak to them.
1: Might be. They may be on the flight from Calcutta to Delhi. Who knows? They may be in Delhi. They may be traveling even today or to. Anything can happen. But incidentally, everybody's mobile phone was switched off or out of coverage.
2: Patna police have booked educator Faisal Khan, also called Khan Sir, for attempted murder and Arms Act violation following a violent clash outside his coaching center in Patna on the 2nd of June. While police refuted Khan Sir's claim that the rival centers initiated the gunfire, his defense counsel has denied the accusation, calling the FIR retaliatory and stating that the guards fired only in the air for safety. Khan Sir's legal team is now pursuing an anticipatory bail plea, asserting he is being framed in a case which is designed to defame him.
3: कल भाई उनका एनिसिपेटरी से बेल फाइल हुआ
4: जी,
3: सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं, डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं, तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन, पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर जुर्माने स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है जिसमें इनके गार्ड को मारने की गई है, हेड इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं, और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद FIR कर दी।
2: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters and placards highlighting their demands, while several participants wore cockroach masks to draw attention to their grievances.
5: जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा, लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
6: मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किल बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे।
2: And BJP Chief Nitin Naveen issued a strong statement hitting out at the CJP protest. Naveen asserted that forces sitting abroad cannot dictate to the India's youth and emphasized that the country's young population is not a puppet that can be manipulated by external narratives. Listen.
7: कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा

0: of what is going to happen in Delhi in the next few days.
1: Interesting. So 5 to 10 MPs that you tried to contact, maybe their phones were on flight mode, Ritabata Banerjee. Who knows? When they do come back on again and you manage to speak to them.
0: Might be. They may be on the flight from Calcutta to Delhi. Who knows? They may be in Delhi. They may be traveling even today or to. Anything can happen. But incidentally, everybody's mobile phone was switched off or out of coverage.
2: Patna police have booked educator Faisal Khan, also called Khan Sir, for attempted murder and Arms Act violation following a violent clash outside his coaching center in Patna on the 2nd of June. While police refuted Khan Sir's claim that the rival centers initiated the gunfire, his defense counsel has denied the accusation, calling the FIR retaliatory and stating that the guards fired only in the air for safety. Khan Sir's legal team is now pursuing an anticipatory bail plea, asserting he is being framed in a case which is designed to defame him.
3: सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं, डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं, तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन, पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर जुर्माने स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है जिसमें इनके गार्ड को मारपीट की गई है, हेड इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं, और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद FIR कर दी।
2: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters and placards highlighting their demands, while several participants wore cockroach masks to draw attention to their grievances.
4: तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा, लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
5: मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है, उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे।
2: And BJP chief Nitin Naveen issued a strong statement hitting out at the CJP protest. Naveen asserted that forces sitting abroad cannot dictate to the India's youth, and emphasized that the country's young population is not a puppet that can be manipulated by external narratives. Listen.
6: कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला। आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है देश के लोगों को, डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
2: Just days after the formation of the new Karnataka cabinet, Chief Minister D.K. Sivakumar is facing the challenge of managing the discontent within his own team. The most serious flashpoint came from senior Congress leader Ramalinga Reddy, While the crisis was diffused following

0: I'm so proud to be part of that world, because we've created some crazy moments, some wonderful moments. This is like a, you know, most dysfunctional family you will ever find. And the mother is like a rule breaker. She is very strong-headed. She is someone who, you know, lives in a society where she's getting judged all the time. But she has these two kids, and could something happens in the house, there's a Khan line right there. Have you seen that?
1: I am guessing you're blown away by the script.
0: Oh yes, I loved it. I love my character. I love all the characters in the movie. And I thought that it was a very well put together film. I mean, every character has conviction in the... and like you said, the bhasha.
1: Yeah.
0: It's very different, it's lyrical. You know, aise jhagda bhi karte to aise lagta hai ki pyar se baat kar rahe hain. Lekin hum log kafi jhagda karte hain.
1: Tell me one thing. When you are surrounded by actors, professional actors, you have a director telling you, is it intimidating?
2: It was not on this set, because they all made me so comfortable at home. So, mujhe initially, like ma'am said, workshop se hi first day, main comfortable thi dono ke saath. It was never ki main yahan pe out of place feel kare ya kuch. And even with Suresh sir, the way he treated me day one se, everybody on set, ek hota hai na ki sab achhe log ek saath hain. Hamare jo DOP sir hai, Anuj sir, Pooja ma'am, Ravi sir, Tripti, एवरीबडी, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सच में
1: कांड करने में मजा आया,
2: कांड करने में मजा आया. और वो जो टाइटल है ना, वो ये नहीं लग रहा है कि हम वो फील नहीं कर रहे हैं. वो फीलिंग है कि एक घर के अंदर ही है. एक्चुअल वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं. एक माँ है जो प्रोटेक्ट कर रही है मुझे ऑफ स्क्रीन भी. एक बहन है जो मुझे सिखा रही है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है. और उसके साथ सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझे हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में और इतनी पेशेंस और सपोर्ट के साथ. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, फर्स्ट टाइम एक सेट पे होना, बट इतने अच्छे लोगों के साथ. तो मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ एक भी सेकंड. और मेरा इतने
1: ड्रीम
2: ड्रीम टीम.
1: एब्सोल्युटली. बट यू नो, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू नो हाउ टू डील विद ट्रोल्स एंड कमेंट्स. बट अ लॉट ऑफ पीपल से, दिस इज टू यू ऑल्सो, अ लॉट ऑफ पीपल से, यू नो, नाउडेज कंटेंट क्रिएटर्स आर जस्ट बिकमिंग एक्टर्स. And the directors are taking them because of their followers. Is that true? And how do you deal with such comments when it comes to you? You know, ye influencers kyun ban rahe actors?
3: I think that's what she's been dealing a lot in the last
1: few. Yeah.
3: But I'll be very honest, it's very unfair. Meri film mein Madhuri Dixit hai. Mujhe nahi chahiye aise small talks. Tripti Dimri hai. Ravi Kishan hai. I don't need those. So purely has been cast for the part, as simple as that.
1: And how are you dealing with the trolls?
2: I am just ignoring them, because unko jo bolna hai bole, main to apna dream ji chuki hu, ji rahi hu.
1: Bhat ye kaam. Ravi ji, you know, to be cast opposite Madhuri Dixit.
4: Oh God. Yeah. पहले तो मुझे लगा था how I'm going to perform, how I will.
1: You also think like that?
4: Yeah, yeah. Because see, मैंने इनसे कभी मेरी रूबरू कभी मुलाकात नहीं हुई थी. माधुरी मैम को पर्दे पे देखे थे, बाद में ऐसा कहीं टकराव नहीं हुआ था. और सीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सीन्स, जरा भी आसान सीन नहीं. इनके साथ मेरे बहुत ही ना मैंने वैसे कैरेक्टर कभी किया, ना मैंने माधुरी मैम को वैसे किरदार में कभी देखा. ऑल थैंक्स टू सुरेश त्रिवेणी जी. और कुछ भी, माधुरी मैम को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई है और उस दुनिया में रहती हैं, कैसे खोई रहती हैं. इनकी आंखों में देखना, बहुत दूर तक देखती हैं. वो पता नहीं कितने दूर जाती हैं. आई स्टिल कोई मतलब, किधर तूफान हुआ, किधर आग लगी, मैंने बोला इधर ये हुआ. आई टू टेल हर एवरीथिंग, यू नो, ये वो ऐसे. हाँ या
2: पूरे दिन रहेंगे.
4: So cute. Yeah. You are so good. Keep it up. Keep this beautiful energy on.
3: Yeah.
2: Yes.
4: What a blessing you have. What a blessing you have. God bless.
1: Thank you so much, guys. Thank you for talking to us. So much fun.
5: It's playful. It's flirty. It's exotic. Feathers have made a huge comeback in fashion, from Aishwarya Rai at Cannes to Beyoncé at Met Gala. From runways to the red carpet.

0: Incidentally, everybody's mobile phone was switched off or out of coverage.
1: Patna police have booked educator Faisal Khan, also called Khan Sir, for attempted murder, an Arms Act violation following a violent clash outside his coaching center in Patna on the 2nd of June. While police refuted Khan Sir's claim that the rival centers initiated the gunfire, his defense counsel has denied the accusation, calling the FIR retaliatory and stating that the guards fired only in the air for safety. Khan Sir's legal team is now pursuing an anticipatory bail plea, asserting he is being framed in a case which is designed to defame him.
2: सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं है, डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं है। तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन, पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर जुर्माने स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है जिसमें इनके गार्ड को मारपीट की गई है, हेड इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं, और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद FIR कर दी।
1: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters and placards highlighting their demands, while several participants wore cockroach masks to draw attention to their grievances.
3: जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रेस स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा। लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
4: मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे।
1: And BJP chief Nitin Naveen issued a strong statement hitting out at the CJP protest. Naveen asserted that forces sitting abroad cannot dictate to the India's youth, and emphasized that the country's young population is not a puppet that can be manipulated by external narratives. Listen.
5: कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है देश के लोगों को, डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
1: Just days after the formation of the new Karnataka cabinet, Chief Minister D.K. Sivakumar is facing the challenge of managing the discontent within his own team. The most serious flashpoint came from senior Congress leader Ramalinga Reddy. While the crisis was diffused following late-night talks with the Chief Minister, it has drawn attention to the wider unease within the cabinet. We learned that the minister briefly tendered his resignation after expressing dissatisfaction with being allotted the irrigation portfolio instead of the Bengaluru development portfolio he was reportedly seeking.
6: Shri D.K. Shivakumar, Shri B.K. Hariprasad, Shri Siddharamaiah,

0: See, Kunal Ghosh has a habit of speaking four things in a single day. So a man who speaks four things or five things, in the morning he says something, in the afternoon he says something, in the late afternoon something, in the quick evening something, in the late evening something. So it's a wastage of time to speak about what Kunal Ghosh has tweeted.
1: He's not among the 61 with you.
0: Not at all, no question.
1: Okay.
0: Even if he wants to sign, we won't allow.
1: There are reports that tomorrow there are many MPs who are going to come to Delhi, that they could give a letter to the Lok Sabha Speaker.
0: See, yesterday Bengali media was asking me when I came out of the assembly. I told them that for the last 7 to 10 days I was not in a condition to speak with any of my former colleagues in the parliament, Trinamool Congress colleagues. Then yesterday I attempted to call a few of them, 4 or 5 people I attempted to call. But incidentally, everybody's phone was switched off, or either switched off or not reachable. So I could not get a chance. Today, maybe in the evening time, late evening or in the night, I will try to call up a few more MPs. If I have a chance to speak with them, then probably, maybe, I can get some idea of what is going to happen in Delhi in the next few days.
1: Interesting. So 5 to 10 MPs that you tried to contact, maybe their phones were on flight mode, Ritabata Banerjee. Who knows? When they do come back on again and you manage to speak to them.
0: Might be. They may be on the flight from Calcutta to Delhi. Who knows? They may be in Delhi. They may be traveling even today or to. Anything can happen. But incidentally, everybody's mobile phone was switched off or out of coverage.
2: Patna police have booked educator Faisal Khan, also called Khan Sir, for attempted murder and Arms Act violation following a violent clash outside his coaching center in Patna on the 2nd of June. While police refuted Khan Sir's claim that the rival centers initiated the gunfire, his defense counsel has denied the accusation, calling the FIR retaliatory and stating that the guards fired only in the air for safety. Khan Sir's legal team is now pursuing an anticipatory bail plea, asserting he is being framed in a case which is designed to defame him.
3: कल था उनका एनिसिपेटरी से बेल फाइल
4: जी
3: सरेंडर करने का कोई प्रश्न नहीं कोई उन पर आरोप भी नहीं डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन पहला केस इनके द्वारा किया गया इनके पर मैंने स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है जिसमें इनके गार्ड को मारपीट की गई है हेड इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद FIR कर
2: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters and placards highlighting their demands, while several participants wore cockroach masks to draw attention to their grievances.
5: जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे
6: मैं बहुत प्रभावित हूँ बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है मैं इसका कद्र करता हूं मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें सफलता जरूर मिलेगी मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है नागरिकों का कर्तव्य है तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे
2: एंड बीजेपी चीफ नितिन नबीन

0: See, Kunal Ghosh has a habit of speaking 4 things in a single day. So a man who speaks 4 things or 5 things, in the morning he says something, in the afternoon he says something, in the late afternoon something, in the quick evening something, in the late evening something. So it's a wastage of time to speak about what Kunal Ghosh has tweeted.
1: He's not among the 61 with you.
0: Not at all, no question.
1: Okay.
0: Even if he wants to sign, he won't allow.
1: There are reports that tomorrow there are many MPs who are going to come to Delhi, that they could give a letter to the Lok Sabha Speaker.
0: See, yesterday Bengali media was asking me when I came out of the assembly. I told them that for the last 7 to 10 days I was not in a condition to speak with any of my former colleagues in the parliament, Trinamool Congress colleagues. Then yesterday I attempted to call a few of them, 4 or 5 people I attempted to call. But incidentally, everybody's phone was switched off, or either switched off or not reachable. So I could not get a chance. Today, maybe in the evening time, late evening or in the night, I will try to call up a few more MPs. If I have a chance to speak with them, then probably, maybe I can get some idea of what is going to happen in Delhi in the next few days.
1: Interesting. So 5 to 10 MPs that you tried to contact, maybe their phones were on flight mode, Ritabata Banerjee. Who knows? When they do come back on again and you manage to speak to them.
0: Might be. They may be on the flight from Calcutta to Delhi. Who knows? They may be in Delhi. They may be traveling even today or to. Anything can happen. But incidentally, everybody's mobile phone was switched off or out of coverage.
2: Patna police have booked educator Faisal Khan, also called Khan Sir, for attempted murder and Arms Act violation following a violent clash outside his coaching center in Patna on the 2nd of June. While police refuted Khan Sir's claim that the rival centers initiated the gunfire, his defense counsel has denied the accusation, calling the FIR retaliatory and stating that the guards fired only in the air for safety. Khan Sir's legal team is now pursuing an anticipatory bail plea, asserting he is being framed in a case which is designed to defame him.
3: कल भाई उनका एनिसिपेटरी से बेल फाइल हुआ
4: जी,
3: सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं, डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं, तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन, पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर जुर्माने स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है जिसमें इनके गार्ड को मारपीट की गई है, हेड इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं, और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद FIR कर दी।
2: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters and placards highlighting their demands, while several participants wore cockroach masks to draw attention to their grievances.
5: जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रेस स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा, लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते, और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे।
6: मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा, ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए, और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है। मैं इसका कद्र करता हूं, मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार, उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है, और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे।

0: Yesterday, Bengali media was asking me when I came out of the assembly. I told them that for the last 7 to 10 days, I was not in a condition to speak with any of my former colleagues in the parliament, Trinamool Congress colleagues. Then yesterday, I attempted to call a few of them. 4 or 5 people I attempted to call. But incidentally, everybody's phone was switched off or either switched off or not reachable. So I could not get a chance. Today, maybe in the evening time, late evening or in the night, I will try to call up a few more MPs. If I have a chance to speak with them, then probably, maybe I can get some idea of what is going to happen in Delhi in the next few days.
1: Interesting. So 5 to 10 MPs that you tried to contact, maybe their phones were on flight mode, Rituparna Banerjee. Who knows? When they do come back on again and you manage to speak to them.
0: They may be on the flight from Calcutta to Delhi. Who knows? They may be in Delhi. They may be traveling even today or tomorrow. Anything can happen. But incidentally, everybody's mobile phone was switched off or out of coverage.
2: Patna police have booked educator Faisal Khan, also called Khan Sir, for attempted murder and Arms Act violation following a violent clash outside his coaching center in Patna on the 2nd of June. While police refuted Khan Sir's claim that the rival centers initiated the gunfire, his defense counsel has denied the accusation, calling the FIR retaliatory and stating that the guards fired only in the air for safety. Khan Sir's legal team is now pursuing an anticipatory bail plea, asserting he is being framed in a case which is designed to defame him.
3: कल फाइल उनका एनिसिपेटी से बेल फाइल
4: जी
3: सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं कोई उन पर आरोप भी नहीं डायरेक्ट कोई आरोप भी नहीं तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन पहला केस इनके द्वारा किया गया इनके पर जमाने स्टाफ के द्वारा एफआईआर किया गया है जिसमें इनके गार्ड को मारपीट है हेड इंजरी है जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद एफआईआर कर
2: The Cockroach Janata Party staged a massive protest at Delhi's Jantar Mantar today over the ongoing CBSE and NEET controversy. Demonstrators employed creative and symbolic methods to voice their anger. Protesters were seen carrying eye-catching posters and placards highlighting their demands, while several participants wore cockroach masks to draw attention to their grievances.
5: जब कांग्रेस जनता पार्टी का पेज स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने कहा था ये तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है ये तो एक सोशल मीडिया पर ही लिमिटेड रहकर रह जाएगा लेकिन आज हमने देख लिया कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है ये एक आंदोलन है जो जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते और इसको हम देश भर में लेकर जाएंगे और हम फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा होंगे
6: मैं बहुत प्रभावित हूँ बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं शोर शराबा ये युवा पीढ़ी का उत्साह है अपने मुश्किलातों के बारे में उन्हें सुलझाने के लिए और ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं मगर उनका उत्साह इतना है कि समा नहीं रहा है मैं इसका कद्र करता हूं मगर अपील करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से आप आग्रह करते रहें सफलता जरूर मिलेगी मैं यही कहूंगा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार उनके जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदारी जरूर लेते हैं जब कोई गलत होता है और ऐसा याद दिलाना इनका कर्तव्य है नागरिकों का कर्तव्य है तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मुझे उम्मीद है सरकार और मंत्री अपना कर्तव्य निभाएंगे
2: And BJP Chief Nitin Naveen issued a strong statement hitting out at the CJP protest. Naveen asserted that forces sitting abroad cannot dictate to the India's youth and emphasized that the country's young population is not a puppet that can be manipulated by external narratives. Listen.
7: कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है किसान गांव के पगडंडियों में रहता है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है आज

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला.
9: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है.
10: आज के की खाबें झालमुड़ी ना माचे झोल.
8: How will you celebrate?
9: झालमुड़ी माचे झोल विद रसगुल्ला.
11: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
12: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
13: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की.
8: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
14: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
15: I think that was not the only incident.
16: Tabe puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে.
17: ইকোনমি, বিজনেস, ওয়ার্ল্ড, টেকনোলজি, নয়েজ ফিল্টার্ড, নাম্বারস ডিকোডেড, ইনসাইটস দ্যাট রিওয়ায়ার ইয়োর ওয়ার্ল্ড ভিউ, ফ্রম গভর্নেন্স টু গ্রোথ, উই কানেক্ট দ্য ডটস. ইয়োর ডেইলি এজ, ইয়োর গ্লোবাল অ্যাডভান্টেজ. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.
18: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
19: Launch control, 0 to 100.
20: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
21: This car makes no sense, yet it makes every sense.
22: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
23: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
24: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
25: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's that to me? How to do?
24: The show that sets the prime time agenda.
25: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
24: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.